أنزل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

0: as you know it, is extinct. This is a new species of music station. The evolution
1: has begun.
0: This is the all-new
2: FM
0: 100. Why change and buy into technology?
3: There's only one station in Maine blazing today's hottest music.
4: The hottest music.
5: You're listening to.
4: This station is bomb.
2: FM 100.
6: FM 100.
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: This is your music.

0: This is a produced radio promo.
1: With special effects devised to get your attention.
0: This is where I can tell you what you can win.
1: I'll say it again with effect.
0: What you can win.
1: Now I speed up to emphasize how important it is. A massive big prize followed by another big prize and an opportunity to win the overall prize.
0: The overall prize.
1: The overall prize allows you and somebody you know to do something amazing.
0: Thanks to this radio station.
2: This radio station.
0: Big bang to finish the whole thing off.
3: 100 FM.
4: The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
7: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
8: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
10: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शौबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शौबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
11: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
12: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
13: एंड सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात।
9: एंड
7: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
8: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
9: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: your location for maximum music.
1: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा
3: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
6: शौकत खानम कराची की तकदीर
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें

First, let me tell you who I am. If you don't know me, then I'm gonna tell you. अगर आप सब मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ी सी नाराजगी तो बनती है.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: महरारा देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: Welcome back, here you are, Jerem Shehzadi. मैं हूँ आपके साथ. जल्दी से आ जाइए प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा है, because we are here with all of you, because मेरा आपके साथ रहने वाला है ठीक 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का, और इस खूबसूरत से साथ में आप सब मेरे साथ आ जाएं. करना क्या है, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना. करना आपने ये, अपने मोबाइल को राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, LHR लिखना, स्पेस देना और भेज देना 3-6-3-6 पे.

Assalamualaikum and Assalamualaikum Pakistan once again. Here you are, Arzu Aram Shahzadi. You are listening to FM 100 Lahore Radio Station. So live, I am with you, Arzu Aram Shahzadi. Yes, so Jannab, today our program has come after a few days, but we are not late. We say that morning is forgotten, evening is back. So we don't say forgotten. At least I am not forgotten. And you all come with us. What do you have to do now? आपने करना है कि आपने अपने मोबाइल को राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, LHR लिखना है, स्पेस देना है और उसे भेज देना है 3-6-3-6 पे. और जल्दी से आ जाएंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, बिकॉज आई मिस यू ऑल द पीपल हु लिसनिंग टू मी फ्रॉम FM 100. चलते हैं एक नेक्स्ट ट्रैक की जाने बातें वापस.

किन्ने डरे ते किन्नी वारी लड़िया मैं बन के दलेर तक, किन्ना मरे ते किन्नी वारी बड़े मेरे मिट्टियां दे ढेर तक।

Welcome back to Janab Hegar Ajram Shehzadi. Sajjad Ali Latla Saab, kahan se? Okay, welcome to all the people who are listening to us. आपने करना क्या, आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, LHR लिखना है, स्पेस देना और भेज देना है 3636 पे.

और आज बात करने जा रहे हैं हम बहुत ही जबरदस्त, मेरे ख्याल में 2026 का ये टॉपेस्ट शो होगा, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत कमाल है। सो आर यू द पीपल रेडी? जैसा कि आप जानते हैं जी, FM 100 जो है वो हमेशा ही आप सबके लिए बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लेके आता है, इन्फॉर्मेटिव, इनोवेटिव, फुल ऑफ एनर्जी और आपकी तन्हाइयों का साथी। और हमेशा जी आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन से भरे प्रोग्राम होते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एज से ताल्लुक रखते हैं, FM 100 आपका सोली साथी है जी।

टाइम हुआ है 10:28 AM और आप सब लोग मेरे साथ हैं और इस टाइम को बीते पता ही नहीं चलेगा, जल्दी से आ जाए. सो आज का जो जो टॉपिक है, आज का जो प्रोग्राम है, ये बिल्कुल फुली बेस्ड है, सोचा समझा प्रोग्राम है, आज का प्लान्ड है. सो 2026 का जबरदस्त प्रोग्राम आप सबकी खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ. मुझे कहते हैं आरजेरम शहजादी. अगर आप कहीं सफर पर हैं तो आपका सफर बहुत सहल और आसान गुजरे. वैसे तो हम सारे ही सफर में हैं.

0: इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
0: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉक नहीं करता।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
0: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
1: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
2: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
1: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
0: आइए वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रब्ता करें 0300-555-0011 पर।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: वेलकम बैक। जितना वापस आ गए हम और मुस्कुरा लीजिए, आज थोड़ा सा मुस्कुरा ना ले, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ काफी दिनों के बाद आए हैं। मुस्कुरा लीजिए। अगर वेलकम बैक जी जनाब, ऑल द लिसनर्स एंड ऑल

Once again, assalamualaikum ka. जी तो जरा मुस्कुरा लीजिए. अगर आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं तो कभी कभी बिला वजह मुस्कुराना भी तो अच्छा होता है. जरूरी नहीं है कि हम जो हैं उसके लिए वजह रीजंस तलाश करते रहें. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत जबरदस्त है जी. इतना जबरदस्त है कि दौरे हाजिर में मेरे ख्याल में जितने भी हमारी जेन जी है, जंग ये जो जनरेशन है, जंग वाली ये यंग नहीं है वैसे, जंग है ना, ये यंग कहते हैं जी, यंग जनरेशन. मेरे ख्याल में ये जंग जनरेशन है जी. जंग ही लगी हुई है हर जगह, हर तरफ, हर गली, हर कूचे में. बिल्कुल हमें आपके साथ ठीक 1 बजे तक के लिए. और प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो मैं अभी अनाउंस करती हूँ विद इन 10 to 15 मिनट्स. इतने में मैं चाह रही हूँ आप सब लोग आ जाएं, तशरीफ ले आएं और सबको बताएं आप अपने इर्द गिर्द.

0: Welcome back, जी तो जनाब, this is my first and last favorite song. Oh my god, it's my too much favorite.
1: Oh sanam, oh jigar.
0: ये song सुनते ही आपको लगेगा कि शायद आप कहीं और से गाना सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तान का ब्रांड है and I'm really happy to listen them. कि इतनी देखें, हर दौर में हर जगह पर जो है वो आप लोग कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, बट देखें ये जो दौर है और कुछ लोगों की जो कहानी है, बायोग्राफी है, मेरे ख्याल में सॉन्ग के साथ बिल्कुल वेरी करती है और मेरी तो अपनी करती है, इसलिए मुझे बहुत दिल के करीब है. So let's listen together. Safar brand name hai ji Bayan. Bayan jo hai wo ek band name hai. Aur Sherazam naam hai ji iska mere khayal mein, if I'm right. Aur bahut hi khoobsurat isne gana gaya hai aur bade zabardast iske bol hain. Iske jo bol hain na, wohi to sari anmol hai.
1: सनम ओ जिगर, तुमको हो क्या ही खबर, कैसे कटी ये रातें हैं, कहते हैं सब मगर.

0: से।
1: वेलकम बैक जी जनाब, के सॉन्ग लगे और मैं खो ना जाऊं तो मजा नहीं आता। आई लव दिस सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मजे का लगता है ये सॉन्ग, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारी जो बायोग्राफी है, हमारी जो जिंदगी की स्टोरी है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं ये बहुत रिलेट करता है।

बता दूं फिर क्या है आज, जल्दी से आप लोग भी बता दीजिए कि मेरा प्रोग्राम ऑन एयर आ गया है, जल्दी से शेयरिंग डन कर दीजिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.

10:47 AM. आप शायद चल रहे होंगे या फिर गाड़ी चला रहे होंगे, बट हम आपके साथ साथ हैं।

वाओ, देख के ना ठंडा ठंडा सा फील होना शुरू हो जाता है। इतने खूबसूरत पहाड़ और बिल्कुल साफ फिजा। मौसम चेंज हो रहा है जी। मौसम चेंज होने के साथ अगर आपको कोई ऐसी मशीन चाहिए जो कि आपकी फिजा को साफ रखे, आपके माहौल को खुशगवार रखे और जिसकी आवाज भी पैदा ना हो और जो आपको धूप छाओं भी दे और आपको फल वगैरह भी दे, तो वो बताएं वो ऐसी मशीन कौन सी हो सकती है। लेट्स गेस, हरी अब जल्दी से, ऐसी मशीन जो कि हवा भी दे, पानी हमें उसको लगाना पड़े और वो धूप से भी हमें बचाए और बिल्कुल नॉइजलेस हो। हमें जल्दी से बताएं कि वो मशीन कौन सी है, किसके दिमाग जो है वो, किसका IQ जो है वो बहुत जबरदस्त है, जल्दी से हमें बताएं। हरी अब, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस थिंग, कि ऐसी कौन सी मशीन है कि जो हवा भी दे, जो नॉइजलेस हो और जो हमारे माहौल को साफ रखे और जिसके ऊपर खर्चा भी ना हो। क्या आप सब लोग जानते हैं?

वेलकम बैक जी जनाब, 10 बज के हो गए हैं 57 मिनट और हम आपके साथ हैं जी, और हम आपके साथ रहना चाहते हैं ठीक दोपहर 1 बजे तक, लेकिन आप कितने बजे तक रहने चाहते हैं? जल्दी से आएं, जल्दी से आगे बताएं, हमें प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, बिकॉज प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। और आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं?

आप सुन रहे हैं आरजे रमजे आजादी को, मैं हूँ आपके साथ। तो जनाब मैं बात कर रही हूँ, जिक्र कर रही हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीज है पीपल आर एंड आई एम सो हैप्पी, सब लोग आ गए हैं और आना शुरू हो गए, जल्दी से आ जाए। प्रोग्राम कैसा बन रहा है? प्रोग्राम में आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है जी। आप अपने मोबाइल प्रोवाइड करेंगे, अल्ले चार लिखेंगे, स्पेस देंगे और भेज देंगे 300-300 पे, और इस तरह आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे और हमें भी पता चल जाएगा कि आप भी कोई हैं और आपको भी पता चलेगा हम भी कोई हैं। जारी सी बात है, आपका पहला इंट्रोडक्शन जो है वो आपका शक्लो सूरत होता है और आपका दूसरा जो इंट्रोडक्शन है, आपका पहला तारुफ है वो आपका शक्लो सूरत, आपकी प्रेजेंस है, और आपका जो दूसरा तारुफ होता है वो आपके अल्फाज होते हैं। ऐसा ही है ना?

0: ओके सुना, आप 11 बजने वाले हैं, बल्कि बस जी 11 ऑलमोस्ट बज रहे हैं, 10:59 AM। आप सबसे गुजारिश है जल्दी से आ जाएं, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। Cause I'm here for all of you.
1: Say no. Yep, sir.
0: Okay, three. We are going to welcome 11. 11 को हम वेलकम करते हैं, 11 बज गए और आज 1 सितंबर है जी, सितंबर को वेलकम कर रहे हैं।
2: इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: वेलकम बैक जी, जनाब है और आरजे अरम शहजादी, और अब हम शामिल करते हैं आप सबके मैसेजेस 11 o'clock। जी बिल्कुल, सबसे पहला जिसका मैसेज आया था वो थे जी सज्जाद अली लाडला साहब, हक अदा किया जी इतने दिनों के बाद आने का। एंड उसके बाद थे कामरान मसूद फ्रॉम दीना जेलम। लतीफ कोसू साहब हमारे साथ थे, उमर अहसन हमारे साथ थे जी, और नजीर कोसू साहब सोबतपुरा बलोचिस्तान से।

क्या बात है जी, देखे ना क्या ही बात है, देखे तो सही कि भाई वो मतलब कहते हैं ना कि जिद तुहानू किसी के उत्ते मान हुंदा है ताई तो तुसी ओदे नाल लै हो जी डाडी गल करदे हो। भाई दसो मैनू तुसी सारे किते गुम हुंदे हो है? हम साथ साथ आप लोगों के लिए लिस्ट भी तैयार रखते हैं और साथ साथ बातें भी करते हैं, साथ साथ हिप हॉप टिप टॉप शोज भी होते हैं और एंटरटेनमेंट के साथ इंफरटेनमेंट भी होती है। और आज का जो टॉपिक है, आई एम गोइंग टू अनाउंस।

loveless static. Okay, so now I'm going to announce today's topic. Comparison trap. लिख लीजिए कंपैरिजन ट्रैप्स. हम लोग जो है ना वो जदीद दौर में आए के दौर में अगर हम किसी चीज से किसी मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं तो वो यही है. याद रखिए इसको, जब मैं एक्सपेंड करूंगी तो आप सबको समझ आ जाएगी कि आई एम ऑन द राइट. जो मैंने टॉपिक चूज किया है जबरदस्त किस्म का है. ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने अभी सिर्फ सुना है और उसको समझ आ गया? उठ के पंगड़ा पाओ. ठीक है जी, पंगड़ा पा लेने हैं.

अच्छा सा आ गई, मजा नहीं आता जिम्मे। 3-6-3 GB आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप हमें कहां से सुन रहे हैं, क्या नाश्ता कर रहे थे। कितना बम्बास्टिक किस्म का मैसेज किया है बाबर अली ने, वो कह रहे हैं मैं सवात मलाकंद दरगाही से बात कर रहा हूं, सलाम करता हूं, सितंबर को वेलकम करता हूं, दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं, टाइम विद द डॉन ब्रेड ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वाह क्या बात है जी, क्या एक्सप्लेनेशन दी है उन्होंने, क्या ही खूबसूरत बात। अच्छा जी, जितने भी मेरे लिसनर हैं, मैं कह रही हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, यार इतनी तो होनी चाहिए कि बंदा एक सवाल पूछ रहा है, बातें कर रहा है आप सबके साथ, तो आप लोग उसको आंसरेबल तो हो ना, आंसर करें मेरे साथ साथ, चलें और मुझे बताएं कि आप हैं हमारे साथ साथ। ऐसा ना करें, गूंगे बहरे नहीं बनते। माना जी रेडियो जो है वो बहुत जबरदस्त चीज है। देखें जी, जितना भी सोशल मीडिया तरक्की कर जाए, आई एम विद रेडियो पाकिस्तान। ठीक है, सोशल मीडिया पे हम लोग हैं, करते हैं सारा कुछ, बट जो आपकी बुनियाद है उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप जापान चले जाएं तो वो अपनी रीतों रिवाज को, अपनी रवायात को अभी भी जिंदा रखते हैं, वो अपनी सकाफत भूलते नहीं है, और वो लोग भी अपनी सकाफत को नहीं ना भूलते, वही जिंदा कौमें होती हैं, ये याद रखिए।

Welcome back! आज का जो है ना आज का जो प्रोग्राम है जी, ये बड़ा मुझे लगता है कि अनप्रेडिक्टेबल सा है। मैंने शुरू में कहा था प्लान्ड, हाँ मैंने सोचा था कि आज हम ये बात करेंगे कि ये जो कंपैरिजन ट्रैप्स हैं, आज का हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है कंपैरिजन ट्रैप्स, और ये हमें वही जवाब दे सकते हैं हमारे सुनने वाले जो कि हमें सुनते हैं, और अगर नहीं भी सुनते हैं, जिनके पास अक्ल है ना वो दे सकते हैं। दो बातें अभी तक मैंने पूछी हैं, एक वो मशीन जो खर्चा ना हो जिसका कोई, हाँ, और वो बिना खर्चे के आप सब, आपको ये बहुत आसान है, आप सबके इर्द गिर्द है, और वो ग्रीन भी हो। भाई चलें और टिप्स दे देते हैं, मैं नहीं समझती कि हमारे भी इस दौर में इतने भी हमारे डल माइंड है।

ओके जी, हमारे साथ हैं मालाकंड से बाबर अली, मालाकंड से जी हैं बाबर अली और दरगाही सवाल से कह रहे हैं। अच्छा जी, सलाम के बाद आपके सवाल का जवाब मेरे पास जहन में है ये कि पहाड़ों के जरिए, बिल्कुल जी, पहाड़ भी इस चीज का हिस्सा है, दरख्त, पौधे, पहाड़ और सूरज, चांद, ये सारी जो चीजें हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। मगर लंबी कहानी है, SMS पर नहीं लिखा जा सकता। बाबर अली मालाकंड, दरगाही सवाद, बहुत शुक्रिया बाबर अली। आप हमारे नाम से हमें सर्च कीजिए, हमारे काफी प्लेटफॉर्म हैं, RJ इरम शहजादी लिखिए, फिर वहां पर लंबी कहानी आप सुना सकते हैं। जी हाँ, आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं।

अभी के लिए जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं हमारे सफर में हमराही हैं उनको कहना चाहेंगे जी ओ सेम टाइम था आंसर का वाह क्या बात है जी हरी अब जल्दी से आ जाएं ब्रेक वरना फिर मैं 15 मिनट के लिए ब्रेक पे चली जाऊंगी और इससे पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं आप जल्दी से आ जाएं प्रोग्राम को जो है वो आप मत अंडर एस्टिमेट करें लोग जो भी हमें सुन रहे हैं वो सब हमारे साथ आएं क्योंकि हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल आपकी जिंदगियों से बहुत कंसर्न करता है आपकी आने वाली नस्लों से हमारी आने वाली नस्लों से बहुत कंसर्न है जी दरख्त लगाएं पौधे लगाएं और ये जो शॉपिंग बैग है इनका इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए इसकी जगह पर हमें जो है वो थैले के बैग लोहे की ज्योमेट्रियां लोहे की बॉटल्स शीशे की और मट्टी की ये सारी चीजें जो है ना वो करें और ठगियां लगाना छोड़ें भी अपने आप को ही हम ठगी लगा रहे हैं यकीन कीजिए बिलीव मी जिंदगी पहले हमारे बड़ों की जो थी वो कितनी जबरदस्त थी ऐसे ही है ना कि उसमें जो है ना वो इतनी थकन नहीं होती थी गर्मी नहीं थी इन्वायरमेंट चेंज हो गया हमारी वजह से हुआ है आपको पता है सूरज की शुआएं जो है वो डायरेक्टली जमीन पर नहीं आती Do you know?

0: वेलकम बैक जी जनाब, है और आज हम शहजादी 11:29 AM और मैं आपके साथ हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक था जी, उसी पर हम बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन ट्रैप्स जो है। साथ ही साथ हम नेचर की बात कर रहे हैं, माहौल को साफ रखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो देखें जी, स्मोग आ जाती है और ये सारी चीजें पहले तो नहीं आती थी, अब क्यों आई हैं? तो क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है कि ये किसकी वजह से है? अल्लाह का नहीं, हमारा अपना जो निज़ाम हम सब लोगों ने कायम किया हुआ है खुद से। जैसे हम सिंगल, जिसे कहते हैं सिंगल टाइम, हम वो यूज कर रहे होते हैं, डिस्पोजिबल बर्तन आ गए, हर चीज की रिप्लेसमेंट हो गई। पहले मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन होते थे, तो ये सारी चीजें जब रिप्लेस हुई तो फिर क्या हुआ, उसके साथ ही फिर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो गया। तो भाई मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसके साथ आप दरख्त इतने ज्यादा लगाएं कि आपकी जो हमारी जो फिजा है वो साफ रहे। हम सांस लेने के तो तकरीबन जो है ना, वो बिल्कुल नियर रहे। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप भी अपने आप को एक्नॉलेज करें इस बारे में, और अपनी यंग जनरेशन को भी करें, जो कि जंग जनरेशन है, क्योंकि यंग जनरेशन नहीं, जंग जनरेशन है। जंग करनी पड़ती है हमें इस जनरेशन के साथ, कोई भी चीज मनवानी हो, कोई भी चीज करनी हो। अभी 11:30 की ब्रेक है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, आते हैं वापस, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। स्टे ट्यून्ड FM 100।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

वेलकम बैक. देखा जी, जैसा कि अभी आप एफएम पर ही सुन रहे थे कि हमारी जो पाकिस्तान की जो जमीनें हैं ना, उनके अंदर कितनी कमी आ गई है. देखिए, अगर हम इसी तरह ये सारी चीजें यूज करते रहेंगे ना, मतलब हम लोग ये शॉपिंग बैग जो है वो गत्ते के, वो कपड़े के इस्तेमाल करने चाहिए हमें, जो जमीन में जाके जमीन के लिए खाद का सिस्टम बने ना, अपने बच्चों को किचन गार्डनिंग सिखाएं और अपने बच्चों को बताएं कि ये चीजें कितनी अहम है. हम लोग बहुत रेडी टू वेयर हो गए हैं, रेडी टू ईट हो गए हैं, रेडी टू स्लीप हो गए हैं, रेडी टू, मैं अब क्या कहूँ कि रेडी टू रेडी हो गए हैं कि हर चीज में हमने मतलब तेजी अपना ली है. कहीं रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा हमें, अदरवाइज जब कुदरत आपको ठहराएगी ना, फिर हम सबकी चीखें निकल जाएंगी. ये हकीकत है. अगर हम अभी रुके नहीं, ठहरे नहीं, और ठहर के हमने अपने अतराफ का जायजा नहीं ना लिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और हमारी जो हमें अल्लाह ने एक इतना खूबसूरत यूनिवर्स दिया हुआ है, हम उसको कैसे आलूदा कर रहे हैं, जमीन को कैसे तबाह कर रहे हैं कि वो सब्जियां, वो फल जायके खत्म हो रहे हैं, तो हमें फिर इंतजार करना चाहिए कि कुदरत जब बंद कर देगी सारी चीजें, तो फिर फाके और ये सारी चीजें होंगी यकीनी. तो कंपैरिजन ट्रैप्स हैं जी. अगले आप अगर आप पिछले कुछ सालों, कुछ दहाइयों का कंपैरिजन करें, तो अब क्या करें, हम कहाँ खड़े हैं. सांस की बीमारियां हमारे यहाँ ठीक है, और मुख्तलिफ बीमारियों में हम लोग आ गए हैं. वजह सेहत के मसाइल हैं, नफसियाती मसाइल हैं, माहौलियाती मसाइल हैं. इन मसाइल के सबब अल्लाह तो नहीं है, हम सब इंसान हैं, हम सब ने मिल के अपने माहौल का बेड़ा गर्क कर लिया. तो दूसरी बात आ गई कि हम इन चीजों में कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है, कि पहले लोग इतने खुशाइन क्यों थे, इतने तंदुरुस्त क्यों थे. हम लोगों ने ना अपनी राह रास्ते बदल लिए, हम लोग उन जगहों से इस जगह जल्दी आते हैं. अट्रैक्टिव चीजें हमारे अंदर ये हैं कि भाई फलां के पास गाड़ी है जी, फलां के पास बड़ी हैवी गाड़ी है, फलां के पास इतना पैसा है. ये कंपैरिजन ट्रैप्स जो है ना, ये इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया और हमारी आने वाली नस्लों का भी बेड़ा गर्क कर दिया. तो आप लोगों को नहीं लगता कि ये ट्रैप्स हैं? ट्रैप किसको कहते हैं? जाल है ये. ये एक जाल है, इसमें से खुद भी निकलें और दूसरों का भी जो है वो हेल्प करें. छोटे छोटे बच्चे आप देखें किस तरफ जा रही है हमारी जनरेशन. उनके मुंह के अंदर छोटी छोटी मशीनें हैं जो कि वो सांस को, एक तो पहले ही हमारी फिजा इतनी आलूदा है, दूसरा वो वेप्स आजकल जो आ गए हैं जो पीते हैं बच्चे, नहीं होना चाहिए. मैं जहां कहीं भी देखती हूँ बच्चों को एक मुंह से धुआं निकाल रहे होते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी ना खुत्ती में लगाऊं, दो तीन पकड़ के उल्टा लटका दूं.

इतने चैलेंजेस हमें सबको फेस करने पड़े हैं, तो इनको तो इनकी जनरेशन के आगे और करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, ज्यादा से ज्यादा अपने आप अपने साथ ये वादा करें कि 2026 के जो 4 महीने रह गए हैं इसमें हमने क्या करना है। छोड़ दें भाई, सारे मुकाबले छोड़ दें। खुद से मुकाबला करें, खुद के साथ बैठें। किसके साथ है मुकाबला आपका? हाँ, फलां के पास ये है, फलां के पास वो है। बिना मोबाइल के वॉक किया करें, किसी दोस्त के साथ बैठा करें। हमारे बड़े जो है वो बहुत टाइम बिताया करते थे, अब हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम लोग बोर हो जाते हैं। अरे भाई क्या हो गया, कभी खुद बैठ जाया करें तन्हा, कभी दूसरों के साथ। कोई अच्छी कंपनी आपके यहाँ जरूर होगी, और अगर ना भी हो तो अच्छा बनाने की कोशिश क्या करें। ये जो हमें धमकियां है ना आने वाले फ्यूचर की, हमें धमकी है फिजा की, हमें धमकी है गजाई किल्लत की, हम मतलब गजाई किल्लत हो सकती है आज के जो हमारे गेस्ट और बल्कि आप आने वाले FM 100 पर ये पूरी सीरीज देखेंगे सुनेंगे। इवन ये नहीं, लोग पहाड़ों में जाते हैं वहां जाकर उनको भी आलूदा कर रहे होते हैं, गंद फैला रहे होते हैं। सिस्टर हम सब रिश्तेदार है, रेडियो FM बहुत ज्यादा सुनते हैं हम, ऑल कॉलेज फ्रेंड्स आज भी प्रोग्राम सुनते हैं, बाबर अली, नवाज अली, अमजद अली, निफाज अली, निजर अली, निजार अली, मोहसिन खान, अफान, अफनान अख्तर, हुसैन अख्तर, वसीम अख्तर एंड फैसल हयात, गुल तासीर, सैद नूर एंड सजावल खान, जियाउल्ला, मलकन देरागाई एंड सवात फिजागट, ये क्या मुझे समझ नहीं आई एंड पे आपने क्या लिखा है, बट बहुत जबरदस्त लिखा है।

बहुत शुक्रिया आपका बाबर अली, आप हमें सुन रहे हैं सवात से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखें कितना दूर है यहाँ से सवात, लाहौर से आप हमें लाइव हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो पर, और रेडियो की दुनिया, रेडियो की जिंदगी, रेडियो से प्यार एक अलग ही होता है भाई। ये हमारी जेंजी, सॉरी टू से, हमारी जो न्यू जनरेशन है वो फील नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सारा कुछ सजा सजाया प्लेट में मिला है, तो उनको क्या पता कि एक एक पर्दे के पीछे का जो एक सारा वो था ना, पहले जिस तरह से पर्दा किया करती थी, चीजों को ढांप के रखा जाता था, अब सारा शो ऑफ हो गया। आप देखें जाएं कि कितना कंपैरिजन ट्रैप है, जगह जगह पे किचन इतने खूबसूरत उन्होंने डिजाइन किए हुए हैं, हर डिश नंगी पड़ी होती है, उसको दिखा रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तो आप देखें बरकतें तो खुद ही उठ गई और लोग बेचारे रोग में पड़ गए। क्या ख्याल है? मेरी इस सारी गुफ्तगू से अगर आप किसी को इख्तलाफ है तो आप जरूर मुझे बताएं, क्योंकि मैं ऐसा डाटा आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, ऐसी प्रॉब्लम्स आप सब के साथ शेयर कर रही हूं जो हम लोग इस दौरे हाजिर में फेस कर रहे हैं। और हम लोग एहसास कमतरी में ज्यादा हो गए हैं, जितनी ज्यादा फैसिलिटीज आ गई हैं, जितने ज्यादा एआई टूल्स आ गए हैं, जितनी ज्यादा यहाँ पर आपके पास इन्वेंशंस आ गई हैं, आप उतने तन्हा अंदर से खोखले और कीड़ा सा लग गया है सबको। वो कीड़ा किसी के गम में, किसी के हसद में, किसी की गाड़ी देखकर, किसी के कपड़े, किसी का स्टेटस देखकर, किसी के जूते देखकर, किसी का इवन यहाँ तक बैग देखकर, मतलब ये सारी चीजें हमें स्टेटस कॉन्शियस करती जा रही हैं, कंपैरिजन ट्रैप्स करते होते जा रहे हैं, हम किसी ना किसी जाल में फंसे हुए हैं। तो अपने आप को बाहर निकालें, खुदारा कोशिश करें कि आप अपने साथ कुछ टाइम बिताएं और उस टाइम को अपने छोटे बच्चों के साथ भी शेयर करें। अब उनको क्या पता हम उनको दे क्या रहे हैं। अब रात के कुछ पल बिना मोबाइल के चांद के साथ बिताया करें, और रात के वो जो पहर, जो खामोशी में जब एक लाइट चली जाती, मुझे तो लगता है कि अब लाइट जाना भी मुझे पहले बुरा लगता था, लेकिन अब वो लाइट जाना मुझे नेमत लगता है। उस लाइट जाने में हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठ जाते हैं। नाइस, जबरदस्त शो, कमाल अंदाजे बयान, कमल नाज हमारे साथ हैं, इरम हम रेडियो लवर हैं। एग्जैक्टली, मैं भी रेडियो लवर हूं और इसलिए आपको रेडियो पे मिलती हूं, बिकॉज बड़े लोग मुझे आर्ग्यू करते हैं, आप इस दौर में रेडियो कौन सुनता है, रेडियो कोई सुनता है, आप तो ये भी कर सकते हैं, आप तो वो भी कर सकते हैं। येस ऑफकोर्स, आई हैव द ऑल फैसिलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह हैव ऑल द थिंग्स, बट बावजूद इसके आई चूज द रेडियो। आई एम नॉट ओल्डर, मैं 90s की नहीं हूं, मतलब कि मैं इसी दौर की हूं जब तार वाले फोन से हम लोग डिजिटल फोन पर आए, हम लोग टच मोबाइल पर आए, मैं इसी दौर से हूं। और इतनी उम्र नहीं मेरी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि टाइम बड़ी जल्दी से, तेजी से ना फ्लिप हो गया। अभी तो हम पैदल चला करते थे, गांव से यहां आया करते थे, अब हर घर में गाड़ी है, हर घर में मोटरसाइकिल है, लेकिन लोगों को इस चीज की सेंस नहीं है कि उन्होंने उस गाड़ी को सर्विस भी करवाना है, बाइक को भी सर्विस करवाना है। ठीक है, अगर आपको नहीं उनकी सेंस तो आप साइकिल चलाएं, साइकिल को आपने गरीबी क्यों समझ लिया है? और इसमें सिर्फ एक ही बंदा नहीं पार्टिसिपेट करेगा, पूरी सबको मिलके पार्टिसिपेट करना होगा। अब देखें, अब कोई ऑफिस जाने वाला है कि उसने टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, वो तो मुझे कहेगा मैम मैंने इतने टाइम पे पहुंचना है, मैं साइकिल पे कैसे पहुंचूं, मेरा जो ऑनर है वो नहीं करेगा। तो पूरे सिस्टम में तब्दीली लाने की जरूरत है, और इससे पहले कि हम पूरे सिस्टम की तब्दीली की बात करें, हुकूमत कहीं ना कहीं इस सारी चीज में रोल प्ले कर रही है, हमें भी करना चाहिए। मत वेट करें कि ये होगा तो वो होगा, भाई अपनी कोशिश अपनी जारी करना शुरू कर दें, अपनी कोशिश को स्टार्ट करना शुरू कर दें। मरना तो है ही है भाई, सबने जान

हमें भी करना चाहिए। मत वेट करें कि ये होगा तो वो होगा, भाई अपनी कोशिश अपनी जारी करना शुरू कर दें, अपनी कोशिश को स्टार्ट करना शुरू कर दें। मरना तो है ही है भाई, सबने जाना है, क्यों ना ऐसा काम करके जाएं कि सदियों आपको याद रखा जाए।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM 100
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
1: आसान जहर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज जुहर का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM
2: 100। इरशादे बारी ताला है, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा ना कर दे कि इंसाफ ही ना करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। सूरह मायदा।
1: FM 100।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

0: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
1: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
2: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
1: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
2: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाइए,
0: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और रابطہ करें 0300 555 0011 पर।

0: Radio 1. Radio 1. 100 FM.
1: I love it.

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: सिवाज स्टोन एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
2: आजादी नशे से, आजादी महरूमियों से।
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
4: अजान असर पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। लाहौर और उसके मजाफात में नमाज असर का वक्त हो गया है।

0: सूफी स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: FM 100।
2: इरशादे बारी ताला है, ए ईमान वालो, ना तो अल्लाह और रसूल से खयानत करो और ना अपनी अमानतों में खयानत करो, और तुम इन बातों को जानते हो। और जान रखो कि तुम्हारा माल और औलाद बड़ी आजमाइश है, और यह कि अल्लाह के पास नेकियों का बड़ा सवाब है। सूरह अनफाल।
1: FM 100।

0: FM
1: 100. पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं, इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। रजिस्टर नाउ एट cyberhackathon.pk।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉब ए सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब ए सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
7: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
8: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
9: एंड सर सब्स पाकिस्तान चैलेंज की ऑडियो पर अपनी वीडियो अपलोड करें और पाइए जीतने का मौका आईफोन 17 प्रो मैक्स, इलेक्ट्रिक बाइक और शानदार कीमती इनामात।
5: एंड
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
4: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: This is your music.
2: मस्ती के दिन है, चलो झूमे और गाएं हम।

0: your location for maximum music.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: चेंज द मूड।
0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

तुम से तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। आई नो व्हाट यू वांट, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: Pakistan is building a safer, smarter digital ecosystem, and we need your talent. Step up, build a cyber-safe life, and unlock premier careers in cybersecurity at the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
1: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
4: शौकत खानम कराची की तकलीफ
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: Music of your choice.

0: 800 FM, The Music Machine.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

0: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
1: गुजरात की इंडस्ट्री भी नॉनस्टॉप और ये ऑफर भी, जैज गुजरात मैक्स ऑफर, जिससे मिले 25 GB डेटा, 1000 जैज मिनट्स और SMS और 200 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 400 रुपए के लोड में विद जैज 5G। अभी ऑफर हासिल करने के लिए *3177# डायल करें। शराय तो जवाबित लागू है। गुजरात की इंडस्ट्री भी नॉनस्टॉप और ये ऑफर भी, जैज गुजरात मैक्स ऑफर, जिससे मिले 25 GB डेटा, 1000 जैज मिनट्स और SMS और 200 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 400 रुपए के लोड में विद जैज 5G। अभी ऑफर हासिल करने के लिए *3177# डायल करें। शराय तो जवाबित लागू है।
2: अखियां नूर

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
2: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिरे इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं। हर जुमेरात को दिन 11 से 12 बजे FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा। अब आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और राब्ता करें 0300-555-0011 पर।
6: मंशियात स्मगलिंग का अंजाम सिर्फ हथकड़ी, जेल और बदनामी है।
7: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
8: आजान मगरिब पेश की जा रही है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के तावन से।
9: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM 100 के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में नमाज मगरिब का वक्त हो गया है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: इरशादे बारी ताला है, तुम्हारा परवरदिगार तो अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जलवा फरोज हुआ। वही हर एक काम का इंतजाम करता है, कोई उसके पास उसकी इजाजत हासिल किए बगैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, भला तुम गौर क्यों नहीं करते। सूरह यूनुस।
2: FM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

गुजरात की इंडस्ट्री भी नॉनस्टॉप और ये ऑफर भी जास गुजरात मैक्स ऑफर, जिससे मिले 25 GB डेटा, 1000 जास मिनट्स और SMS और 200 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 400 रुपए के लोड में विद जास 5G। अभी ऑफर हासिल करने के लिए *3177# डायल करें। शराय तो जवाबित लागू है।

0: location for maximum music.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
2: FM 100. No works, just play. Your volume. Good. This is FM 100.

0: बढ़ते रहे, हर बार और हम बढ़ते रहे।
1: This program was brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
3: Sir Subs Pakistan Challenge ki audio par apni video upload kare aur paiye jeetne ka mauka iPhone 17 Pro Max, electric bike aur shandar qeemti inamat.
1: And
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek organization.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
5: शौकत खानम, कराची की तकमील।
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें।
8: माहिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

0: गुजरात की इंडस्ट्री भी नॉनस्टॉप और ये ऑफर भी जास गुजरात मैक्स ऑफर, जिससे मिले 25 GB डेटा, 1000 जास मिनट्स और SMS और 200 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 400 रुपए के लोड में विद जास 5G। अभी ऑफर हासिल करने के लिए *3177# डायल करें। शराय तो जवाबित लागू है।
1: Who plays the best music? FM 100.

0: at 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है। ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जैज सार्फिन के लिए *275#, जोंग सार्फिन के लिए *4004#, यूफोन सार्फिन के लिए *6611# और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342#। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
2: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।

0: your location for maximum music.
1: गुजरात की इंडस्ट्री भी नॉनस्टॉप और ये ऑफर भी जास गुजरात मैक्स ऑफर जिससे मिले 25 GB डेटा 1000 जास मिनट्स और SMS और 200 दूसरे नेटवर्क मिनट्स वो भी सिर्फ 400 रुपए के लोड में विद जास 5G। अभी ऑफर हासिल करने के लिए *3177# डायल करें। शराइत और जवाबित लागू है।

अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G। This is your music.

गुजरात की इंडस्ट्री भी नॉनस्टॉप और ये ऑफर भी जास गुजरात मैक्स ऑफर, जिससे मिले 25 GB डेटा, 1000 जास मिनट्स और SMS और 200 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 400 रुपए के लोड में विद जास 5G। अभी ऑफर हासिल करने के लिए *3177# डायल करें। शराइत और जवाबित लागू है।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
2: शौकत खानम, कराची की तकनीक।
3: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.शौकतखानम.org.pk विजिट करें।

0: 100 percent pure music only on FM 100 Pakistan.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

0: Radio number one for hit gaane.
1: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
0: We play

फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।

Everybody wants to get a true judge.

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम हैं। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे। 100.1 FM, your location for maximum music.

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

तुमसे तुम्हारे ख्वाब नहीं छीन सकता। आई नो व्हाट यू वांट, मगर मैं फौज नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि फौज मेरे खून में शामिल है। अगर फौज छोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता।

0: मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे।
1: 100.1 FM, your location for maximum music.

भाइयों घबराना नहीं, यहाँ नहीं पढ़ सकती कोई रे, खत्म हो गया सबका वेट, क्योंकि अब आ

नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा दे। 100.1 FM, your location for maximum music.